0: बग ट्रैफिक, जो बग ट्रैफिक, दिस इज मोटर टैंकर जग लाटकी कॉल साइन अल्फा टैंगो फॉक्स ट्रॉट
1: जर्सी कोस्ट गार्ड, दिस इज लायन हार्ट ओवर.
2: Shit, calling.
1: Stop soon, that's our surrounding Corbier now, over.
0: Call sign, Alpha, Tango, Foxtrot.
2: Are you speaking to the system?
0: Many thanks, see you next time.
1: Yeah, that's all understood, thank you.

जोबर्ग ट्रैफिक, जोबर्ग ट्रैफिक, सर्वेसल CMA, CGM Crowberg कॉलिंग कमिंग प्लीज। जोबर्ग ट्रैफिक, मोटर वेसल CMA, CGM Crowberg प्लीज गो अहेड। GPS पोजीशन 49 डिग्री 46 डेसिमल 40 मिनट्स नॉर्थ, 003 डिग्री 05 डेसिमल 70 मिनट्स वेस्ट। अफर्मेटिव सर, ETA डनकर्क इज 1500 आवर्स लोकल टाइम।

मैक्सिमम ड्राफ्ट 12.20, टोटल क्रू ऑन बोर्ड 2, 2 इंक्लूडिंग मास्टर। कार्गो जनरल कार्गो इन कंटेनर।

सर प्लीज नोट डाउन टोटल कार्गो वेट 38684.1 मैट्रिक टन। कम अगेन 38684.1 मैट्रिक टन। अफर्मेटिव सर, वी हैव डेंजरस कार्गो, काइंडली नोट डाउन वेट क्लास बाय क्लास। या क्लास 2.2102 केजी, क्लास 3308858 केजी, क्लास 4.1109 07 केजी, क्लास 6.1249 केजी, क्लास 8.51322 केजी, क्लास 9.374575 केजी। टोटल डेंजरस कार्गो वेट 7.37013 केजी। प्लीज नोट डाउन VLSFO 430 मैट्रिक टन, LSMGO 253 मैट्रिक टन एंड टोटल ल्यूब ऑयल 56758 लीटर्स। नहीं डू सर, ऑल इक्विपमेंट वर्किंग इन गुड कंडीशन। वेल कॉपरेट, स्टैंड बाय 131।